0: City FM 89.
1: It's 7:30 a.m.
2: City FM
3: 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
3: City FM 89. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
5: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है मैं चाहूंगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें शौकत खानम लैब से टेस्ट शौकत खानम कराची की तकमील
6: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
8: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89
9: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन
10: Welcome back, everyone. I hope you enjoyed those few songs and I hope you enjoyed the show because that's it for today. I hope your Wednesday treats you well. Don't forget to follow us on Instagram, YouTube and TikTok at CityFM89 or tune in through the app, which you can download from either the Play or the App Store. You can also listen in on our website, cityfm89.com. See you tomorrow, bright and early. Bye.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 AM.
3: City FM 89.
4: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab thum jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
5: City FM 89, we're playing your song.
6: Everybody go.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30.
2: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
7: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
8: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanam.org.pk visit karein.
9: Coffee ka mood hai? To discount bhi hona chahiye. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
10: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
11: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है मैं चाहूंगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें शौकत खानम लैब से टेस्ट शौकत खानम कराची की तकमील
12: The official hashtag on Twitter and Facebook. Hashtag CityFM89. That's hashtag CITYFM89.
13: Attention. Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
14: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
5: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
3: The

0: along your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
5: Coffee ka mood hai? To discount bhi hona chahiye. Ab easy paisa debit cards ke saath pay karein aur paye up to 30% off apne favorite coffee brands pe. Tim Hortons, Coffee Mystery, Third Culture, Second Cup, Greeno and many more across Pakistan. To sip karein, save karein aur enjoy karein. Easy paisa digital bank. Easy wala bank.
6: We're playing your song.
7: मंजिल अभी बाकी है और सफर रवा है. इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों, पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया. शाहराहे भुट्टो कराची के सनती इलाकों, बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है, जबकि 141 से ज्यादा सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई, जिससे लाखों अफराद की आमदोरफ, तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली. तवानाई के शोबे में थरकोल मंसूबा सिंध की तरक्की का अहम संगे मील बन चुका है, जहां मकामी कोयले से हजारों मेगावाट बिजली पैदा करके कौमी ग्रिड को मजबूत बनाया जा रहा है. नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट, घारो विंड कॉरिडोर और शमसी तवानाई के मंसूबे तवानाई के मुतबादिल जराए को फरोख दे रहे हैं. SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश कयादत, तरक्की पसंद सोच, अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है. हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निजाम कायम किया. SIUT, SICVD, JPMC, NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स, गंबर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब हैं, जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है. सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट में जदीद दौर का आगाज किया. पाकिस्तान की पहली ईवी बस, पिंक बस और खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही हैं, जो खवातीन को महफूज और बावकार सफर फराहम कर रही हैं. तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी, चिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सक्खर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स, खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, बहाली, हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गयी. खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइट कराची, नूरियाबाद, बिन कासिम और दीगर सनती जोन्स में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोख दिया जा रहा है. ज़रई खुशहाली के फरोख के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया. बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद, ज़रई अद्वियात, जदीद मशीनरी पर सब्सिडी, रियायती कर्जे, फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है. पानी के हर कतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए लाखों एकड़ ज़रई अराजी को दोबारा पैदावारी अमल से जोड़ा जा रहा है. ये सिर्फ मंसूबों, आदाद शुमार या तामीरात की दास्तान नहीं, खुशहाली को सिंध के हर शहर, हर गांव और हर खानदान तक पहुंचाने के अज़्म की रोशन अलामत है. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
2: City FM 89. We're playing your song.
3: You're listening to
8: The Rush Hour with ABD.
0: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABG, and we are going through real versus real news. So our next story that we need to test whether it's real versus real is NASA confirms a hidden 13th zodiac sign that changes everyone's astrology sign. No, that is definitely fake. Yeah, it's totally fake. NASA clarified that astrology is not science. They simply calculated mathematical constellations based on Earth's axis, not altered personal horoscope systems. I'm surprised at this. The fact that, yes, fine, maybe a 13th zodiac sign may not be

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
5: Pakistan bhar ki tarah Karachi mein bhi Shaukat Khanum Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahunga ki aap apne tamam test Shaukat Khanum Lab se karwaye aur Shaukat Khanum Karachi ki takmeel mein apna hissa dale. Shaukat Khanum Lab se test Shaukat Khanum Karachi ki takmeel.
6: Coffee ka mood hai to discount bhi hona chahiye. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून तो ले आए मॉसपेल क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
1: City FM 89 your drive along companion.
8: Have you saved our WhatsApp number yet?
9: 0314289898989.
8: Get in touch over WhatsApp.
10: City FM 89
11: sounds different.
12: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है मैं चाहूंगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील میں اپنا حصہ ڈالیں شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ شوکت خانم کراچی کی تکمیل
4: We're playing your song
5: You know the city but do you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about and a few that they aren't I'm Anika and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop I've got you covered Come and join me on what's happening in your city every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
6: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
7: Dark Room with Dapu Javeri.
8: I hope you all are doing well and staying safe. You are in the dark room where you will be safe for a while at least. I have a ton of incredible R&B, soul and jazz mixed up together. And I want to dedicate this entire show to my wonderful friend Sam. I hope she's listening in. The next track is Engelbert Humperdinck and A Man Without Love.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है मैं चाहूंगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील میں اپنا حصہ ڈالیں شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ شوکت خانم کراچی کی تکمیل
4: سٹی ایف ایم 89.9
5: Hold on! Special delivery coming through!
6: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
7: We're now live on WhatsApp.
8: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
7: It's as easy as 03142-898989.
6: Save our number now and WhatsApp us.
9: City FM 89, we're playing your song.
10: Everybody go!
11: Music, if used in the right way, has the ability to elevate.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
1: City FM 89
3: योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन
1: You're listening to
4: Dark Room with Tapu Javeri.
5: Why does everything happen in Georgia? And definitely in jazz and R&B. Moving on, we have more fabulous music. This is Al Green with my favorite track. This is Tired of Being Alone.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m.
3: City FM 89. We're playing your song.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
5: You're listening to
6: Dark Room with Tapu Javeri.
7: I started the show with a Nat King Cold track, and coming close to the end of the show, I need to add more Nat King. This is Smile, Nat King Cold.

0: launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing your song.
0: Coming up next.
1: Future Sounds.
5: 89.
6: We're playing your song.
7: Trending today.
8: The Weeknd has officially walked back earlier statements regarding his retirement and name change. In a recent interview, the artist confirmed he will continue releasing music under his iconic stage moniker indefinitely.
9: City FM 89.
10: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज वी फाइव शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और एसएमएस की शेयरिंग अपनी पसंद की वी फाइव ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
5: 89
6: वेयर प्लेइंग योर सॉन्ग
7: फ्यूचर साउंड
11: New tunes, hot beats, where your next favorite track finds you.

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
1: You're listening to
3: Future Sounds.
4: Future Sounds.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाए अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: सिटी एफएम 89.
4: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड.
5: Introducing a system override for your ears.
6: New energy, new perspective.
7: The same 24 hours, but a completely different vibe.
8: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
10: your evenings just got an upgrade.
8: The rush hour with ABD.
7: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
10: Tune in or get left behind.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.